घर को है राई छाती भी घर झुक झुक झुक झुक पहाड़ चढ़ता ले लच्छा चढ़ाई गर्मी झेलाई पहाड़ चढ़ता ले लच्छा चढ़ाई गर्मी